0: ये है लाइका गोल्ड CTV and C5 proudly present हमारे राम produced by Felicity Theatre India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर

0: TV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
1: 10 डेज टू गो। Aslam is coming to the O2 on the 14th of June. Only 10 days to go for a night full of hits, emotion and magic. Tickets at AXS, exclusive radio partnership, Laika Radio.
2: Bollywood ke legend kalakar, sirf Laika Gold par.

0: Leica Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम. बुक योर टिकट्स नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
2: गारंटेड.
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
2: फोन 02085748410.
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन कोई मने सुत होवे मन बुद्ध मने सगल पवन की शुद्ध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने मार्ग ठाक ना पाए मने पत्स्यों प्रगट जाए मने मग ना चले पंथ मने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
2: London में एक महान धार्मिक अवसर Unity in Divinity presents महासोम यज्ञ 14th से 21st June Woodlane Stanmore के Temple Grounds पर free entry सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ followed by महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, volunteer बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime Location
5: High Appreciation
6: In Dubai
7: Europe और UK के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा Holidays के साथ travel कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले Scottish Highlands Snowdonia के अफसानवी landscapes और stunning coast of Cornwall को explore कीजिए आपका सफर होगा majestic Swiss Alps से लेकर romantic Paris और timeless beauty of Italy के through
8: Visit mantraholidays.co.uk or Call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
10: Must be won.
11: Must be won.
12: Must be won.
13: Must be won.
9: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
14: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com
17: हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सरिता सबरवाल एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे

0: What a classic. सीता गीता से आपने सुना ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में, उससे पहले फिल्म दयावंश से सपना मुखर्जी और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में चाहे मेरी जान तू ले ले।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And this morning, gold is trading at £106.49 sterling per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: One more classic, Sahib Bibi or Gulam. See you after.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
4: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. India versus Pakistan, live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, बिल्कुल unmissable. अपने टिकट्स अभी बुक करें at englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
5: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
8: Be part of a historic grand opening.
9: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
8: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
9: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
8: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

0: स्कैटर्ड शॉवर्स, यानी मिला जुला रहेगा और विंडी भी होगा आज का दिन भाई। यहाँ हवाएं भी चलेंगी, बादल भी होंगे, बारिश भी होगी बूंदाबांदी से लेकर बौछारों तक। टेम्परेचर होगा लंदन में 17 डिग्री सेल्सियस, 17 और 18 के बीच, और सिमिलर होगा मिडलैंड में भी।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Like a gold.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: Good morning. स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में श्रोताओं का, संगीत प्रेमियों का, रसिकों का, जिज्ञासुओं का। बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के जून महीने की 4 तारीख हो गई आज। एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर बहनों भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि शर्मा स्टूडियो पहुंच गया हूं। थैंक्स टू काजल, शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक अपनी बारी है, पूरी तैयारी है भाई। आज थर्सडे को कुछ खास तरह के गीतों का इंतजार होता है हमारे श्रोताओं को, जिनमें क्या होता है, दर्द होता है, वियोग होता है, शिकवे शिकायतें होती हैं। अब शिकायत किससे? भाग्य से, ऊपर वाले से, दुनिया से या दुनिया वालों से? अपनों से ही की जाती हैं शिकायतें साहब, और अपना वो जो बन गया है सपना, वो सपने वो देखता है सभी के सिवा मेरे, मैं जागता हूं जिसके तसव्वुर में रात भर, कर ले वो आफताब से यारी तो किस तरह, दीपक की लौ है मुकद्दर में रात भर, अश्कों से चांदनी ने भिगोए हैं सभी गुल, रोती है चांद के चक्कर में रात भर, फिर जख्म हो गए हैं हरे अपनी खता है, डूबा रहा हूं गम के समंदर में रात भर। तो सुबह ऐसी होनी ही थी।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.
0: कर ले वो आफताब से यारी तो किस तरह, दीपक की लो है जिसके मुकद्दर में रात भर, और सपने वो देखता है सभी के सिवा मेरे, मैं जागता हूँ जिसके तस्वुर में रात भर। उसे नींद कैसे आती है,

0: काश हमारे बस में होता कि भाई गम को ख़त्म कर देते। लेकिन एक बात बताऊँ आपको बहनों भाइयों, अगर गम दुनिया में ना होना तो फिर खुशियों का कोई महत्व नहीं होगा। आप देखिए, अगर किसी शहर में, गांव में, कस्बे में, किसी राज्य में, देश में सिर्फ छाया ही छाया हो तो छाया का कोई महत्व नहीं होगा। धूप ही बताएगी कि छाया कितनी सुखद है। और भाई धूप ही धूप हो, छाया ना हो तो धूप का महत्व नहीं होगा। ये तो भाई धूप और छांव दोनों चाहिए, सुख और दुख दोनों चाहिए, गम और खुशी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस बताते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस गम को मार डालो। चिंतन की बातें हैं, चिंतन में करेंगे 11 बजे की खबरों के बाद। लेकिन फिलहाल तो भाई ये बता दें कि ये गीत जो आप सुन रहे थे, दैट वॉज टेकन फ्रॉम फिल्म आसपास, लता जी की आवाज़ में था। और प्रोग्राम की शुरुआत जिस गीत से हमने की थी, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, शिकायत है ना भाई। ये शिकायत गुरदास मान व साथियों की आवाज़ों में हमने सुनवाई से शुरुआत हुई थी आज के मनोरंजन प्रोग्राम की। बृहस्पतिवार जून महीने की 4 तारीख और भर भाइयों, वक्त हमारी आपकी मुलाकात का है। आज कुछ एक दर्द भरे गीत हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें याद आती है हमारी एक बहन मिसिस शेख जो अक्सर कहती हैं थर्सडे को ना भूलें, 2-4 दर्द भरे गीत ज़रूर शामिल करें। वैसे भाई शरारती गीत, रोमांच के गीत या रोमांटिक गीत, प्यार मोहब्बत के गीत, ये शरारतें तो सभी भाई कार्यक्रमों में मिल जाएंगे आपको। दर्द भरा कोई गीत थर्सडे के मनोरंजन में शामिल होता है, राइट। तो गीत संगीत की महफिल से निकल कर वो ज़रा बैंक का चक्कर लगा के आएँ और पाउंड का रेट पता लगाएँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज का रेट 1 pound के बदले भारतीय मुद्रा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहे हैं 128 rupees and 25 paise. नोट कीजिए, For 1 pound, you could get 128.25 Indian rupees maximum. और साहब इसके साथ साथ कुछ और भी है कि अगर आप इस महीने के आखिर तक 1000 pound से ज़्यादा भिजवाते हैं तो भाई कुछ स्पेशल चीज़ें साथ जोड़ दी गई हैं। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी into win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. और 2000 pounds से ज़्यादा भेजते हैं तो भाई देर इज़ ए चांस टू विन 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक। ऑल द बेस्ट। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.

0: Setco Food Containers, total satisfaction.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: राम कृष्ण हरी यूके तैयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाईव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ कोई पता चला?
10: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
8: शुभकामनाएं तो देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 02085145400. बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट.
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
12: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th से 21st जून वुड लेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर. फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुड लेन स्टैनमोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932623852.
4: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
4: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
4: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मत के।
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी गा रहे थे गीत फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ उसके लिए।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Like a gold.
1: और लीजिए साहब, 10:30 बज चुके हैं, खबरों का वक्त हो गया है और ब्रिटेन में तो जो खबर सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है हेनरी नोवाक की हत्या और उसके हत्यारे के बयान के आधार पर वही देखो पुलिस के व्यवहार पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ख़ासकर अपोजिशन पार्टियां पूछ रही हैं कि वाइट लोगों के साथ ऐसा व्यवहार पुलिस क्यों कर रही है। लगातार कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें ये पाया गया है कि भाई कलर के आधार पर या रंग भेद के आधार पर डरते हुए पुलिस ने जो है अपोजिट व्यवहार किया है वाइट कम्युनिटी के। एंटी वाइट एलिगेशंस फेसिंग पुलिस आफ्टर हेनरी नोवाक्स मर्डर। इस खबर के अलावा भाई इंटरनेशनल लेवल पर जो समाचार आइए उनमें झांकते हैं और पता लगाते हैं कौन कौन सी खबरें आज सुर्खियों में हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। पहली खबर तो भाई ये फिल्मी दुनिया से आ रही है, बॉलीवुड से, मुंबई से। जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया है। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। फिल्म प्रोड्यूसर होने के अलावा वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सेंसर चीफ के तौर पर उनका कार्यकाल बोर्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था। तमाम विवादों के बाद उन्हें 9 साल पहले 2017 में सेंसर चीफ के पद से हटाकर प्रसून जोशी को वहां अध्यक्ष बनाया गया था। पहलाज निहलानी ने आग ही आग, इल्जाम, शोला और शबनम आंखें जैसी सुपरहिट फिल्में बनाकर एक प्रोड्यूसर के तौर पर पहचान बनाई थी। गोविंदा, चंकी पांडे, नीलम ऐसे कलाकारों को उन्होंने कैरियर के अहम मुकाम पर पहुंचाया था। पहलाज निहलानी का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद 3 बजे सांता क्रूज हिंदू शमशान घाट पर किया जाएगा। इंटरनेशनल खबरों में भारत में इसराइल के राजदूत यानी एम्बेसडर रुवेन अजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान बहुत ही बुरे इरादे के साथ बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार बनाने की होड़ में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम कई सालों से डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल और माली दबाव के जरिए ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रवैया बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। अब हम उन्हें फौजी तरीकों से मनाने की कोशिश करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के सीईओ सोहन सिंह ने दोनों तीर्थ स्थलों पिलग्रिमेज की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आने वाला है, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और जोशी मठ को वन वे भी किया गया है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के ज़रूर आए, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे पास एक आंकड़ा रहता है, व्यवस्था बनाने में इंतज़ाम करने में आसानी रहती है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग में भाई कई लोगों की मृत्यु और जख्मी होने के बाद अभी उस खबर से राजधानी का ये इलाका संभला भी नहीं था कि एक और खबर बिहार से अब आ रही है। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में के ICU में आग लगी, कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग उसमें जख्मी हुए बताए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि इजराइल और लेबनान ने सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है, राजी हो गए हैं। हालांकि इसके लिए एक शर्त यह है कि हिजबुल्ला को अपने हमले पूरी तरह रोकने होंगे। ये सहमति तब बनी जब कल बुधवार को साउथ लेबनान में इजरायली हमलों में कम 9 लोग मारे गए और हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले किए। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि सभी देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल और लेबनान के बीच रिश्तों का भविष्य दोनों संप्रभु सरकारों को ही तय करना होगा। उन्होंने किसी भी देश या नॉन स्टेट एक्टर की ओर से लेबनान के भविष्य को बंधक बनाने की किसी भी कोशिश को खारिज किया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में फौजी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए अमेरिकी पार्लियामेंट के निचले सदन यानी लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पास किया है और यह प्रस्ताव 208 के मुकाबले 215 वोटों से पास हुआ। ऐसा तब पॉसिबल हुआ जब 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। अमेरिकी संसद में युद्ध को लेकर, जंग को लेकर असहमति का एक ऐसा पब्लिक शो, पब्लिक प्रोटेस्ट कभी कभार ही देखने को मिलता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इसी साल फरवरी में जंग शुरू की थी। यह चौथी बार है जब हाउस ने ट्रंप की लड़ाई संबंधी ताकतों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
4: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के इस दौर में। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मनोरंजन ऑन लाइका गोल्ड। लाइका रेडियो नेटवर्क पर मैं रवि शर्मा भाई दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस भाग में हम आपको चिंतन सुनवाया करते हैं, थॉट फॉर द डे, यानी आज का विचार।

आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं भारत से हमारी वीना सैनी बहन जी का भेजा आलेख। लिखती हैं, संतों के मुखारविंद से, सत्संग में संतों के सानिध्य से जो सुना जो जाना वो मैं कभी कभी आप तक पहुंचाती हूं, चिंतन में शामिल कीजिएगा। थैंक यू वीना बहन जी। कहते हैं कि एक महात्मा से देवताओं ने कहा, आपने अपनी जिंदगी में बहुत तप किया है, बहुत पूजा पाठ त्याग वैराग सब कुछ आपके जीवन में रहा है, तो आप स्वर्ग में अब प्रस्थान कीजिए, स्वर्ग में पधारिए। ऋषि ने पूछा, स्वर्ग में क्या मिलेगा? स्वर्ग में सुख, उपभोग की तमाम वस्तुएं। संत ने पूछा, स्वर्ग में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा प्रभु? हाँ सुख तो मिलेगा, लेकिन सुख नहीं चाहिए, शांति चाहिए। अब बहनों भाइयों आप भी सोचेंगे, सुख और शांति में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। शांति यानी संतुष्टि। शांति एक एहसास है, इसमें पदार्थ इन्वॉल्व नहीं है, चीजें नहीं है, साधन नहीं है, सोफे बेड गाड़ियां बिल्डिंग भवन जमीन जायदाद नहीं है, बस अनुभव है, एहसास है। देवताओं ने कहा, वो तो स्वर्ग में नहीं होता, स्वर्ग में तो सिर्फ उपभोग कर सकते हैं आप, त्याग नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, कर्म का फल भोगते हैं। ऋषि बहुत पहुंचे हुए थे, नाम था महर्षि मुद्गल। बोले, ऐसे स्थान पर हमें नहीं जाना है जहां हमारे हाथों को सेवा का अवसर ना मिले, और शांति सेवा में है, सुख में नहीं, साधनों में नहीं। और बहन भाइयों, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, बीना बहन जी भी याद दिला रही हैं, आप गुरुद्वारे में जाइए, बड़े बड़े लखपति करोड़पति लोगों को आप जूते साफ करते हुए देखेंगे। पैसे की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, सुख पर्याप्त है, लेकिन शांति चाहिए तो सेवा करनी होगी। सेवा बहुत बड़ी साधना है। महर्षि मुद्गल ने स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया, मैं तो इसी लोक में रह करके परोपकार करूंगा, क्योंकि मुझे सुख नहीं शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, सेटिस्फेक्शन। आइए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें सुख के साधन भले ही ना दें, लेकिन शांति के लिए सेवा का अवसर दें। साधना करने के लिए इच्छा शक्ति दे, किसी के काम आने के लिए हमें प्रेरित करें।

0: चिंतन चिंतन
1: हे ईश्वर न्यायकारी सर्वशक्तिमान, हमें सेवा का अवसर दे। सुख नहीं चाहिए, सुख के साधन नहीं चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। सेवा के माध्यम से, परोपकार के जरिए। और बहन भाइयों, ये आपको भी अनुभव हुआ होगा, एहसास होगा इस बात का, कभी किसी के काम आके देखिए, इस तरह से शांति कमा के देखिए। कोई साधन नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, बस मन में एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, वही है शांति संतुष्टि। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें भारत से वीना सैनी बहन जी ने भिजवाया। और बहन भाइयों, गीत हमने आपको सुनवाया सरताज की आवाज में। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। मुझे यकीन है रोज की तरह आज का चिंतन भी हमारे श्रोताओं को पसंद आया। भाई बहुत सारे संदेश आते हैं, कभी कभी मैं सबका नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन सबको नाम जैसे मुझे जबानी याद हो चुके हैं, चिंतन के प्रेमी। थैंक यू वेरी मच। सुषमा ईस्ट लंदन से कह रही हैं, गुड मॉर्निंग रवि जी। शुक्राना वीना जी का, जिन्होंने ये विचार भिजवाया आज, थैंक यू। शोभना राय जी, थैंक यू वेरी मच। पिंकी, कैसी हैं बहन जी आप? कहती है स्वस्थ नहीं हूं, चिंतन बहुत अच्छा लगा, आई एम इन हॉस्पिटल। बहन जी गेट वेल सून, जल्दी घर आकर के और फिर अब मैसेज भेजिएगा। कहती आई सेलिब्रेटेड माई 70th बर्थडे लास्ट वीक ऑन बैंक हॉलीडे। लेकिन उसके बाद से हॉस्पिटल आना पड़ा। बहन जी हम आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, जल्दी अच्छे हो जाइए। और 70 इज नथिंग, इज ए नंबर। और अर्जुन जी आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच। पम्मी, महेंद्र पटेल, निर्मला जी, हिना जी, सुनीता शर्मा जी, विजय सटन वाले, और विजय हमारे मॉरिशस वाले भी, राजीव पटेल, रागिनी, फरीदा गुलाम अली, नीला चौधरी जी, वत्सला जी, थैंक यू वेरी मच। कहती हैं सेवा के लिए प्रेरणा प्रतीक है, हम उस संस्कृति से जुड़े हैं जिसमें सेवा जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हंसा बोरा, मानसी, अजय फ्रॉम एजाज फ्रॉम चेशम, एजाज भाई थैंक यू वेरी मच। देशराज बैसन साहब, क्या कहें, आपकी तो बहुत सारी जानकारी हम तक पहुंची हुई है, शामिल करेंगे। अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं, गुरुदेव गांजा, आप कहां सुन रहे हैं? और भाई ये संदेश आप कौन है जी? आचार्य ज्योति प्रकाश आपका प्रकाश यहां तक फैल रहा है। कहते हैं हम उन्हें जीने का अंदाज सिखा सकते हैं, हमसे पूछ के क्यों नहीं मरते ये मरने वाले। थैंक यू आचार्य जी। चिंतन समेटते हैं और मनोरंजन की ओर लौटते हैं।
0: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: The competitive rate for £1 they are giving in Indian currency 128.25 rupees. 128 rupees 25 paise ka rate chal raha hai. Aur bhai saath mein ye bhi sun lijiye ki June ke end tak agar aap 1000 pound ya isse zyada bhejte hain तो एवरी डे 75 पाउंड्स का वाउचर जीतने का चांस है, और अगर 2000 पाउंड या उससे ज़्यादा की राशि भिजवाते हैं तो देर इज अ चांस टू विन ए 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Yeah, hey, hey, hey, like a goat.

इन्होंने प्यार किया अपनी आवाज के माध्यम से, अपने अंदाज के माध्यम से, सुरों से, गीतों से। एसपी बाला सुब्रमण्यम भाई आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। व्हाट अ ग्रेट सिंगर ही वाज, और वी विल से दैट ही इज, बिकॉज ही इज देयर, हिज वॉइस इज देयर। भाई इनकी आवाज से परिचय हुआ था फिल्म एक दूजे के लिए, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान, और उसके बाद सलमान खान की तो पहचान ही बन गई इनकी आवाज। और आज उनका जन्मदिन पड़ता है, जन्मदिन तो और भी कई कलाकारों का है, लेकिन वो बाली भाई लाते हैं सारी डायरी उठा करके, सारी जानकारी जुटा करके। लेकिन भाई एक गीत तो हम नूतन जी के ऊपर पिक्चराइज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनका आज बर्थडे है। और एक और महान अभिनेत्री आज दुनिया में होती तो अपना जन्मदिन मना रही होती, भाई बीना राय। उनकी फिल्म का कोई गीत ढूंढते हैं, लेकिन बैक टू बैक संगीत को यहाँ समेटते हैं। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम गा रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का गीत।

0: This is Like a Gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: प्यार करने वाले तो भाई प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलती, दुआ ही निकलती है। जो बिजली चमकती है उनके महल पर, वो कर ले तसल्ली मेरा घर जला कर, दुआ कर गमे दिल, खुदा से दुआ कर।

0: अरे सॉन्ग लता जी की आवाज में भाई, ये गीत हमने समर्पित किया स्वर्गीय बीना राय जी को, अपने जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री। वफाओं का मजबूत दामन बिछा कर, दुआ कर गमे दिल, खुदा से दुआ कर। और साहब ये गीत शुरुआत में बता दें कि आज बीना राय जी की भी जयंती, उनका भी जन्मदिन पड़ता है। हमें हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर बैसन साहब ने याद दिलाया कि भाई उनकी फिल्म का कोई गीत शामिल कीजिएगा, तो साहब शामिल हो गया। और अभी नूतन जी की फिल्म का एक गीत ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वैसे आज कईयों की पुण्यतिथि भी है, जैसे कि बासु चटर्जी फिल्मी दुनिया से, उनका भी भाई जो है आप जानते हैं रिश्ता। और सुलोचना लाटकर, सुलोचना जी वो जो माँ की भूमिकाएं करती रही हैं बहुत सारी फिल्मों में, तो भाई उनकी भी आज पुण्यतिथि है। जन्मदिन मनाने वालों में एक और नाम, वो नीना गुप्ता, बड़ी दबंग अभिनेत्री हैं साहब। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म उन्होंने बनाई दिल्ली 6 पर, यानी जो ये अपना चांदनी चौक का इलाका है, उसमें एक नौजवान लड़की का के रहन सहन और वहाँ की ज़िंदगी को बहुत करीब से जी करके दिखाया उन्होंने, तो वो भी याद आ रही हैं। आज उनका भी जन्मदिन पड़ता है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और 4 जून 1936 में जन्मी थी फिल्म अभिनेत्री नूतन, तो भाई उन्हें भी हम याद कर रहे हैं। और किसका जन्मदिन है? जन्मदिन नहीं साहब, निधन हुआ पहलाज नेहलानी का, पूर्व CBFC चेयरमैन, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन और जाने माने प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी साहब का निधन हो गया है। और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। भाई बहुत सारी उनकी फिल्में जो हैं वो आपको याद होंगी, तो उन्हें भी हम श्रद्धा से याद कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं जिनके आज जन्मदिन या शादी की सालगिरह या फिर भाई कईयों की पुण्यतिथि भी है आज। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अनारकली फिल्म का गीत, दुआओं का मजबूर दामन बिछा कर, नहीं वफाओं का मजबूर दामन बिछा कर, दुआ कर गमे दिल, खुदा से दुआ कर। ये गीत कौन सुना रहे थे आपको, कौन पहुंचा रहे थे आप तक?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Podcast update. और याद दिला दें आपको भाई, हमारा नया एपिसोड जो है वो अवेलेबल है टू सी। ये होस्टेड बाय रूबी रजा, द टाइटल इज मेनोपॉज, और जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारे पुराने एपिसोड भी वहां उपलब्ध हैं। लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सो डोंट फॉरगेट टू सी
1: लाइक अ एक्स्ट्रा। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ye hai
4: Like a Gold
0: TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
8: राम कृष्ण हरी
4: UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
10: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
11: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
10: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
11: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
12: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
13: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
12: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
13: Rich, authentic taste every single time.
12: Royal Chai, brewed for business.
13: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
14: 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.

आचार्य ज्योति जी कह रहे हैं कि मेरी नीस आई हैं, उनके नाम कोई गीत कर दीजिए। पर उनके नाम कैसे करूं, नाम क्या है उनका? अच्छा, लीसा उनका नाम है। तो ठीक है भाई, उनका स्वागत है। और जो गीत आज के कार्यक्रम में आपको अच्छा लगे ज्योति जी, उनके नाम कर दीजिए।

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Wally Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574-8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
6: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
7: कांटों भरी हो या फिर फूलों से सजी हो, दामन तुम्हारा थाम कर चलना है उम्र भर।

आगाज़े सुबह हम तेरे जलवों से करेंगे, शामों ने भी साथ साथ ही ढलना है उम्र भर। कांटों भरी हो राह या फूलों से सजी हो, दामन तुम्हारा थाम कर चलना है उम्र भर।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

0: जाने मेरा जिया करे किसका इंतजार है भाई। शेखर साहब आपकी भेजी तस्वीरों का इंतजार रहने लगा है अब। थैंक यू वेरी वेरी मच। कभी कभी लगता है कितनी मेहनत करते होंगे आप ये सारा तैयार करने में। आशीर्वाद साईं बाबा का दिलवाया आपने भाई आज की पिक्चर फिल्म इस तस्वीर के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। और बहनों भाइयों बैक टू बैक संगीत के माध्यम से दो गीत हमने आपके परोसे आपको परोसे और अब वेल लेट्स फाइंड आउट द पाउंड्स रेट। क्या भाव चल रहा है पाउंड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: By T and C's apply, note कीजिए State Bank of India UK आज दे रहे हैं कितने पैसे? Well, 128 रुपए और 25 पैसे for one pound. भारतीय करेंसी में, भारतीय मुद्रा में 128.25 रुपीस। लेकिन इसके साथ ही भाई वो मत भूलिएगा कि जो ऑफर चल रही है जून के महीने में, सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड यू कुड बी यू नो विनर ऑफ 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टीएनसी अप्लाई।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न Every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: राम कृष्ण हरी। यूके तयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाईव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ कोई पता चला?
7: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
5: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
9: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
10: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply. We'll be right back.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Experience the ultimate escape. 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
2: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
3: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
2: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
5: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
6: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
7: Artist of the Week.
8: कौन है इस सप्ताह? आपको याद है? हाँ, साहब, इस सप्ताह के जो कलाकार हैं उनका नाम है नील कमल। भाई, उनके नाम का मतलब निकलता है नील कमल। मैं तो सोचता था ये हिंदी वर्ड जो है शब्द कहाँ से ढूंढा। भाई, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हिंदी वर्ड साहब हैं। रियल नाम उनका था श्यामलाल बाबू राय। 1 जनवरी 1924 में झांसी में पैदा हुए थे और 27 फरवरी 1997 में इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन इस बीच उनकी कलम से जो गीत जन्मे उनमें भाई ऐसे ऐसे गीत शामिल हैं। आइए बैठिए, वक्त गुजर जाएगा। पुराना जख्म भर जाएगा।

0: बड़ी सशक्त लेखनी से भाई कागज पर उतरे गई ये जज्बात ये भाव इंदीवर साहब के थे एंड ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Kalyan ji, Anand ji ka sangeet. Lata ji ki awaaz. Suniye ye geet.
3: The one and only one, Ravi Sharma. On your number one radio.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and...
2: Hey, पूरी बात की. हाँ हाँ भाई, क्या कहना इन गीतों का और इन संवादों का. देखिए, ये था फिल्म, आई थिंक छलिया का गीत. कौन सी फिल्म से था ये? अब भाई, पुरानी फिल्मों के बारे में इतनी पुख्ता जानकारी नहीं है. जैसा कि आपने लिखा है, किसने लिखा है ये, लिखती हैं कि रवि जी, वो जो गीत था ना, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी. कहते जगदीप जीवर बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज हुआ है वो गीत, आपको देखना चाहिए. भाई सुषमा जी सही कह रही हैं आप, कहती हैं क्योंकि आपने तो देखा नहीं होगा, क्योंकि आप तो ठहरे नए जमाने के, तो इसलिए. कितनी अच्छी और सच्ची हैं आप सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच, ज़रूर देखेंगे. वैसे भाई जगदीप पर पिक्चराइज कुछ और गीत भी हैं फिल्मों में, हैं तो बड़े रेयर लेकिन बहुत प्यारे और सबसे न्यारे गीत हैं. ऐसे भाई कुछ एक अभिनेताओं पर अगर आप ढूंढेंगे तो प्रेम चोपड़ा पर पिक्चराइज कोई गीत ढूंढिएगा, मिल जाएगा डेफिनेटली. ऐसे महमूद पर तो बहुत सारे हैं. तो ऐसे अभिनेता जो हीरो नहीं हैं, विलेन हैं या हास्य अभिनेता हैं, साइड हीरो हैं, सहनायक हैं, भाई उन पर भी कई गीत ऐसे हैं जो आपको बहुत अलग से हट करके मिलेंगे. राइट, थैंक यू वेरी मच सुषमा जी, प्रतिभा जी और रमीला पटेल जी हरो से कहते हैं रवि भाई नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छे अच्छे गीत बजा रहे हैं. और नैना, आप जो गीत सुझा रही हैं ना, यकीन मानिए मैं संभाल के रख रहा हूँ, कभी ना कभी ज़रूर परोस दूंगा. लाइन में लगे रहते हैं ये गीत, बहुत अच्छे अच्छे गीत आप सुझाती हैं या याद दिलाती हैं. और साहब, लाइका रेडियो नेटवर्क पर मनोरंजन कार्यक्रम धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, तो आपको हम एक सूचना भी देना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं. पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि द लेजेंडरी हरिहरन रिटर्न्स टू द यूके सोल इंडिया कार्यक्रम के तहत रॉयल फेस्टिवल हॉल में वो परफॉर्म करेंगे 4 जुलाई को. टिकट्स एट southbankcenter.co.uk. और डोंट फॉरगेट एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर इज लाइका रेडियो नेटवर्क.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: सुनवाते हैं भाई, वो टिल्डा वालों का ट्रैक तो सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले साउथहॉल ट्रैवल वालों का ये संदेश आप तक पहुंचाते हैं. वो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाइए और छुट्टियों पर जाइए कहीं. भाई हमारे यहाँ से आपको बहुत सुंदर ऐसी डील्स मिलेंगी जिनमें फ्लाइट्स, होटल्स और एटोल प्रोटेक्शन सब शामिल हैं. 40 वर्षों से भी ज़्यादा का विश्वास हमने जगाया है सैलानियों के हृदय में. तो कॉन्टैक्ट साउथहॉल ट्रैवल ऑन 0208-574-8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 3rd. 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
15: Four beers, please, garçon!
14: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
16: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
17: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
16: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
17: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
16: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
17: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
16: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
17: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
0: લાઈક અ રેડિયો નેટવર્ક. પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર રાગસન.
18: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
2: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. भाई क्रिकेट का मैच शुरू हो चुका है. बारिश के कारण थोड़ी सी रुकावट के बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में शुरू हो गया है. और भाई बता दें आपको स्कोर के आंकड़े. स्कोर है इस समय 24 रन एक विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का. इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की है और लॉर्ड्स के मैदान में दिस इज द सिचुएशन. 24 रन उन्होंने बनाए हैं, एक विकेट उनका गिर चुका है. मैच बारिश के कारण थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन अब शुरू हो चुका है. स्कोर के आंकड़ों से हम आपको जोड़े रखेंगे.
19: दोस्तों आप सुन रहे हैं

रेसिपी। ऐसा गोरा बदन तब बनता है भाई, ऐसा गीत भी कब कब बनता है। ये ओरिजिनल है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में। इसके बाद इस गीत के कई रूप सामने आए, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है।

हमरे गांव कोई आएगा, हमारे स्टूडियो में कोई आएगा और प्यार की डोर से बंध जाएगा। कौन आएगा भाई? बाली ब्रह्म भट्ट आ रहे हैं अपना प्रोग्राम लेकर के, और एक बजे की खबरों के बाद वो आपका साथ निभाएंगे चार बजे तक। तो साहब, अब अपने कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस संगीत के सुहाने सफ़र में हमारा हम सफ़र बनने का इरादा किया और भाई साथ निभाने का वादा किया। थैंक यू वेरी वेरी मच। हालत संभाल लूँ मैं दिले बेकरार की, शौकी में लूट लूँ अभी कुछ पल बहार की, और ये क्या कि मुलाकात की मुद्दत गुजर गई, अरे बातें शुरू हुई थी अभी उनसे प्यार की। लेकिन साहब अब कल लौट कर आने के लिए आज जाना पड़ेगा, और जाना भी कहते हैं अकेले ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आना जाना अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ महफिल में आकर के बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो आपकी उपस्थिति का एहसास होता है, हर कोई मेरे दिल के पास होता है, लेकिन जब यहाँ से चलता हूँ तो भाई पता चलता है कि ये सफ़र अकेले ही तय करना है।

0: मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि
1: Yes, Crazy for Kishore is coming to town and Suresh ji is on his way.
2: हाँ तो नैनो में
3: बिंदिया है,
2: माथे पे
3: बिंदिया है,
2: तो बालों में
3: गजरा है,
2: आँखों में
3: गजरा है।
2: ओहो।

0: यस, ये सफर तो चलता रहेगा, लेकिन आगे दो दूसरा आपका फेवरेट है जो मैं जानता हूं, आपको सरप्राइज देता हूं। ये सुनिए, कौन सा है ये?
1: हाँ बताइए।
0: ये जीवन है।
1: ओह ब्यूटीफुल।
0: या
1: पिया का घर।
0: साथ गाइए।
1: हाँ।

आई नो, जैसे मैं गाने के साथ गा रहा था, आप भी गा रहे होंगे. एंड दीज आर दी एवरग्रीन सॉन्ग्स एंड वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन नूतन समर्थ बहल. शी वॉज बॉर्न ऑन 4th of June 1936. शी वॉज बॉर्न इन बॉम्बे एंड शी डाइड इन मुंबई. दैट्स राइट, 1936, 4th June 1936, and she passed away on 21st February.

0: in Mumbai. Today is her 90th birth anniversary. She passed away at the age of 54, and it is sad that she died of breast cancer, which was diagnosed in 1990. And then on 21st February 1991, at the age of 54, she passed away. Her father, Kumar Sen Samarth, and her mother, Shobhana Samarth. Everybody knows Shobhana Samarth was the one, a mother who launched her two daughters. That's Nutan and who else? Who else? You tell me. Because Hamari Beti ek film thi jisme baby Tanuja thi. Ji haan, choti baby Tanuja. नूतन की बहन, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों को हमारी बेटी 1958 में इन्होंने 1950 में लॉन्च किया था. एंड ये गाना जो मैंने अभी सुनाया, दिल का भंवर करे पुकार तेरे घर के सामने, उसमें स्टोरी कुछ यूं जाती है कि गोल्डी आनंद, दैट्स विजय आनंद, यू नो, विजय आनंद की फेवरेट एक्ट्रेस वो थी नूतन जी. शी सूटेड परफेक्टली इन द कॉमेडी तेरे घर के सामने, 1963 की जो फिल्म थी. एंड दिल का भंवर करे पुकार, ब्यूटिफुली पिक्चराइज सॉन्ग. इट वॉज शॉट एट कुतुब मीनार टू गिव दैट फील ऑफ दिल्ली. दिल्ली की स्टोरी थी, तो टू गिव द फील ऑफ दिल्ली they picturized it on Kutub Minar. And inki jo style thi Goldie Anand ki, inhone dikhaya Devanand sahab aur Nutan ji, they go up Kutub Minar, they climb up into Kutub Minar as friends, and when they come down from the Kutub Minar, they come back as lovers. और एक गाना दूसरा जो काजल ने आज सुनाया था हमें, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, इट हैड कैमरा ट्रिक्स. एंड नूतन इज सीन इन अ ग्लास ऑफ विस्की उसके अंदर, एंड देव साहब देख रहे हैं उनको, एंड ही पुट सम आइस इन टू इट, और दिखा रहे हैं कि नूतन जी को ठंड लग रही है. एंड सच अ ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन ऑफ द सॉन्ग, देखने वाली चीज़ है. आपने देखा ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उस वो देखिएगा, और जिन्होंने देख लिया उनको याद दिला रहा हूँ मैं कि कितना खूबसूरत अंदाज था गोल्डी आनंद का ही. एंड राज खोसला जी, हु मेड द लाइव्स ऑफ वहीदा रहमान, साधना, आशा पारेख, सिम्मी, मुमताज़, इन सब की इन्होंने करियर बना दी, लाइफ बना दी बाई गिविंग दैम द करेक्ट रोल्स. इन्होंने नूतन जी की भी लाइफ बना दी. कैसे? शी वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड शी वॉज ऑलरेडी एजड, आई वुड से, यू नो, शी वॉज ऑन एट अ मेच्योर एज इन 1978. सो यू कैन इमेजिन 1936 में जन्मी हुई एंड 1978 में इनकी जो उम्र थी. She got a role in Main Tulsi Tere Aangan Ki. That was Raj Khosla's movie. And he gave the role to Nutan Ji. And she won a Filmfare Award for the Best Actress. Yes, thanks to Raj Khosla Ji for that particular role he gave her. Now, looking at Nutan Ji, a career spanning four decades. Ji haan. And log kehte hain 70 plus films, but maine gini तो तकरीबन 80 तक आता है फिल्मों का नंबर. 80 प्लस फिल्म्स, फ्रॉम अर्बन रोमांसेस टू, यू नो, सोशियो रियलिस्ट ड्रामास, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, आई वुड से. एंड कितनी नेचुरल एक्टिंग थी, अगर मेकअप के बगैर भी आ जाए तो इतनी खूबसूरत लगती थी. फिल्म बंदिनी में आप देखो, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, एंड यू जस्ट सी हर सो प्रिटी. You know, a record of 6 Filmfare Awards. Ek 1960 mein award mila tha unko Meri Jung film ka. And she was a supporting actress ka award unko mila tha. Phir 5 awards as best actress. That was a record in the 41 years that she acted from 1950 to 1991. She was active for 41 years. Best actress of Main Tulsi Tere Aangan Ki. Then Best Actress for Film Milan, Best Actress for Film Bandini, Best Actress for Film Sujata, Best Actress for Film Seema, 1957 की फिल्म, हाँ सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, क्या बात क्या बात क्या गाने, मतलब आई कैन रीइटरेट ऑल दोज मूवीज मैंने देखी हुई है जो, एंड इनकी इनकी एक्टिंग तीन फिल्मों में तो इतनी खूबसूरत एक्टिंग थी, शी गॉट नॉमिनेटेड बट शी डिडंट गेट द अवार्ड, बट आई गेव हर द अवार्ड इन माय माइंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऑफ मैं तुलसी तेरे आंगन की, बिकॉज उनको बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी नॉमिनेट किया गया, बट शी वॉन इट इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी, एंड देन बेस्ट एक्ट्रेस इन सौदागर शी वॉज नॉमिनेटेड इन 1974, एंड सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेटेड फॉर अनुराग फिल्म, दैट्स राइट, एंड जैसे मैंने कहा केदार शर्मा डिस्कवर्ड नूतन जी, हाउ डू यू मीन डिस्कवर्ड, बिकॉज द फिल्म हमारी बेटी वॉज प्रोड्यूस्ड बाई हर मदर यू नो ऑफ नूतन एंड तनुजा जी, एंड 1950 की फिल्म, एंड केदार शर्मा हु वॉज डायरेक्टिंग दैट, ही डिस्कवर्ड राज कपूर, ही डिस्कवर्ड मधुबाला, ही डिस्कवर्ड गीता बाली, एंड इन दिस फिल्म ही एक्चुअली मेड दिस पर्टिकुलर फिल्म एंड गॉट नूतन एंड तनुजा इन इट, सो वी आर रिमेम्बरिंग नूतन जी टुडे, लेट्स लिसन टू हर सॉन्ग्स एंड एन्जॉय दिस आवर. मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, एंड इट इज the I would say the 332nd day of Laika Radio Midlands, जहाँ पे ये शो सुनाई दे रहा है आपको. बाली ब्रह्मभट का नमस्कार.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 in British sterling can get you up to 128.4 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app and branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture. Now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
9: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
10: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलीडेज साथे।
11: सीरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
12: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ।
11: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
12: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
11: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो serenehollidays.co.uk पर।
13: पैक्ड फॉर द ट्रिप? गिफ्ट्स? पासपोर्ट?
14: चेक। Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
13: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
14: Simzy?
13: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
15: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
16: T's and C's apply.
17: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
18: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy three nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another three nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
19: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 up Tooting Road. Yeah, visit kijiye minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
20: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
21: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: का जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime Location
1: High Appreciation
2: in Dubai

कितना प्यारा गाना कमाल दिखाया एस डी बर्मन जी ने और मजरू सुल्तानपुरी ने लिरिक्स लिखी। लेकिन आगे जो गाना मैं पेश करने वाला हूँ उसमें भी लिरिक्स तो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखी लेकिन संगीत दिया था मदन मोहन जी ने। ये फिल्म थी आखिरी दाव। और रमा जी आपकी नज़र करता हूँ मैं ये गीत एंड वी हैव बीन डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ नूतन जी। मेरा बस चले तो मैं इतने सारे गाने सुनाऊं जैसे कि हम लोग, सीमा, अनाड़ी, सुजाता, छलिया का तो मैंने सुनाया, बंदिनी का भी सुनाया, सरस्वती चंद्र का नेक्स्ट आवर में, बिकॉज अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपन्स टू बी इंदिवर जी जिन्होंने गाना लिखा था। तो सुनते रहिएगा और लुत्फ उठाते रहिएगा।

0: across London. This is Ballybrambat on Like a Gold.
1: मैंने 10 जनवरी 2026 मैंने फोन किया मुंबई और मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू गाया पहलाज नेहलानी को. पहलाज नेहलानी द ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ बॉलीवुड एंड आई विश्ड हिम हैप्पी 76th बर्थडे. इन्होंने काफ़ी दोस्ती निभाई थी हमारे साथ. लास्ट टाइम हम मिले थे तब गणपति पूजन में हम दोनों ने साथ में जाके पूजा की थी. फर्स्ट फिल्म इनकी हथकड़ी थी 1982 की. सेकंड फिल्म थी आंधी तूफान 1985. थर्ड फिल्म थी इल्ज़ाम 1986 की. दैट वाज़ द डेब्यू ऑफ गोविंदा. गोविंदा की पहली फिल्म. इन्होंने गोविंदा को हीरो बना दिया और उसकी लाइफ बन गई. इनकी लाइफ गोविंदा जी की लाइफ बनाने वाला इंसान पहलाज नेहलानी. फिर उसके बाद 1987 में आग ही आग एक फिल्म थी जिसमें चंकी पांडे को इंट्रोड्यूस किया एंड उसकी लाइफ बना दी. जी हाँ, अनन्या पांडे के फादर हमारे टाइम के

चंकी पांडे, उनकी लाइफ बना दी प्रहलाद निहलानी। एंड ऑन 4th June टुडे 2026 माय फ्रेंड पास्ड अवे, प्रहलाद निहलानी, उनकी आत्मा को सदगति प्राप्त हो। अब मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ, एंड दिस गोज ऑल द वे टू नोवेयर एल्स बट इट गोज टू मोरक्को। जी हाँ, मोरक्को जा रहा है ये गाना। नेक्स्ट गाना है फिल्म दोस्ती का। और क्यों मैं ये गाना पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि हमारी सरिता सब्बरवाल जी वहाँ पे ब्रिज जी के साथ है, राज जी के साथ है, रमेश जी के साथ है, एंड दे आर विद अ वंडरफुल टूर गाइड हुज नेम इज यूसुफ। दैट्स इन अगाडेर इन मोरक्को। यस, सनी मोरक्को, एंड दे आर हैविंग नथिंग बट फन आउट देयर। एंड वी थॉट वील से हाई यूसुफ, थैंक्स फॉर लुकिंग आफ्टर ब्रिज, राज, रमेश एंड सरिता सब्बरवाल जी इन मोरक्को, इन अगाडेर। एंड दिस सॉन्ग फॉर यू, फॉर यूसुफ, फ्रॉम लाइका गोल्ड। This is for Yusuf in Agadir, Morocco, from Laika Gold.

0: इतने सालों बाद भी हर एक नवरात्रि में ये हमेशा गाना सुनाई देता है। कल्याण आनंद जी का संगीत, इंदिवर जी की लिरिक्स, अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक इंदिवर जी, रिमेम्बरिंग नूतन जी, अ कॉम्बो।
1: Making summer feel better. This is Like a Gold.
2: Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।

0: बार एक
1: हाँ जी एक बार मेरा नाम तो कह दो। कह दे रही है मधु जी फ्रॉम कैंटन। कैंटन वाले मधु जी, आपने गरबा किया जब मैंने वो नूतन जी वाला गाना मैंने सुनाया सरस्वती चंद्र का, मैं तो भूल चली बाबुल का देश। अरे वीडियो ले लेना था, मज़ा आ जाता। ये गाना भी मधु जी की नज़र।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
5: Hello. Hello.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Two businesses.
3: Same town.
2: Same service.
3: One appears on page one of Google.
2: The other doesn't.
3: Guess which one gets the customer?
2: The truth is brutal.
3: The first page of Google gets the business.
2: Everyone else gets what's left.
3: So here's the real question.
2: When your customers search for what you sell, do they find you?
3: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208767627।
10: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
11: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन।
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला, ओ लैला लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम

0: हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हमको मोहब्बत करेगा.
2: And that was music of Ravi. And lyrics by Majru Sultanpuri. Next two songs, it'll be Shankar Jayakishan. Pehla gana, Shailendra ki lyrics.
3: Bali Brahmbhatt on Gold Afternoons.
4: Like a gold.
2: जी हाँ, ये म्यूजिक बज रहा है. पधार रहे हैं सैंडी शाह. Sandy Shah with Drive Time on Like a Gold. Raj Patan on Like a Radio Midlands. उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया हो. बाली ब्रह्मट का नमस्कार. और आगे बढ़ते हैं. ये गाना है शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म अनाड़ी का. लिरिक्स लिखी है शैलेंद्र ने. अगला गाना होगा असली नकली का, जहां पे शंकर जयकिशन का संगीत है और लिरिक्स बाय हसरत जयपुरी. एंजॉय.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलिडे साथे।
4: सीरीन हॉलिडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स।
5: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ।
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो serenehollidays.co.uk पर।
6: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Eviction, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444. दैट्स 0208-907-2444.
8: 10 days to go. Aslam is coming to the O2 on the 14th of June. Only 10 days to go for a night full of hits, emotion and magic. Tickets at AXS, exclusive radio partnership, Leica Radio.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com।
11: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 02208-907-2444।
7: sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sona Tours. Call 0208-951-0111.
8: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
9: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 आवर लाइन
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
8: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
10: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली एंड द नेदरलैंड्स स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल Including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
11: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Sandy Shah on Gold Drive. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? आज हम थ्रिलिंग थर्सडे लेके हाजिर हो गए हैं आप सभी के लिए। एंड थ्रिलिंग थर्सडे में कोई थ्रिलिंग सा गीत लाई हूँ, पक्का लाई हूँ। लेकिन उसके पहले अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आइए फटाफट अपनी अपनी अटेंडेंस लगवाइए, क्योंकि अश्विनी टीचर, अश्विनी मैम आ चुकी है क्लास रूम में। और देखो मेरे प्यारे प्यारे सारे सारे धुरंधर सब के सब आ रहे हैं और सब अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं आप सबसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, बहुत रैंडम नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंस पक्का बनता है। तो मैं आज आप सबसे पूछने वाली हूँ, अपना पहला पेमेंट आपको जो मिला, उस पहले पेमेंट में आपने क्या क्या किया? आपको जो पहला पेमेंट मिला, उस पहले पेमेंट में आप सबने क्या क्या किया? सो आई स्टार्टेड न्यूज़ रीडिंग एट द एज ऑफ 18। जिस टीवी चैनल पे मैं काम करती थी, मेरा फर्स्ट पेमेंट वॉज 25 रुपीज़। ठीक है, तो उस 25 रुपीज़ का मैंने 10 रुपीज़ मेरी आई यानी मेरी मम्मी के हाथ में दिए थे और बाकी 15 रुपये के लिए थे समोसे। उस टाइम पे शायद 2 रुपये का एक समोसा था। ओके, सो आपके फर्स्ट पेमेंट में आपने क्या किया? अच्छा, अगर नहीं कभी जॉब कर पाए तो होता है ना कि हमारे रिलेटिव्स जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे एशियन कल्चर में हाथ में कुछ ना कुछ तो पैसे दिए जाते हैं, उन पैसों का क्या किया बताइए फटाफट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you could get up to 128.4 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000 or 1 gram of gold coin every week when you send over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मैं जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड ग्लोबली आप हमें सुन रहे हैं, हमारी वेबसाइट से सुन रहे हैं, आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया, जो भी है आप और हम हैं अभी साथ. सो हम साथ साथ हैं. आई कैनॉट प्ले दैट सॉन्ग क्योंकि वो हमारे इस शो का जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें तो वो नहीं बैठता. लेकिन हमारे इस शो में बैठते हैं आप और हम, और हम मिलकर एंजॉय करते हैं ऑल द फैंटास्टिक मेलोडियस रेट्रो ट्रैक्स. वीकेंड वाला माहौल बन गया ना, मतलब आरजे अश्विनी अभी से डीजे अश्विनी बन गई क्या? अरे देखो अभी तो शो शुरू हुआ है. सभी लोग अपने अपने किस्से कहानियां मुझे बता रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज सो हैप्पी. ना नॉस्टैल्जिया होता है ऐसे कि अरे हमारी फर्स्ट पेमेंट आई थी तो हमने क्या क्या किया था, है ना. तो अभी हमारे तो था, हमारे माँ बाप भगवान हैं तो माँ बाप के हाथ में हम लोग सभी पेमेंट देते हैं. मैंने एक्चुअली ये सवाल सैंडी जी से भी पूछा. मैंने कहा कि आपको जब पहला पेमेंट मिला आपने क्या किया, उन्होंने भी यही कहा कि मैंने अपना पेमेंट मेरी मम्मी के हाथ में दिया. एंड इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक टू कैच अप विद सैंडी जब हम यहाँ पे आके हमारी बैंटरिंग चलती है. उनको छेड़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है. एंड स्पेशली मैंने 50s के एरा में जिस तरीके से बात करते कि मैं वहाँ गई थी तुम क्या कर रहे थे, कभी आप लोगों ने इसे ट्राई किया है? आई नो इट्स वेरी रैंडम एंड फनी, ट्राई करो. घर वालों से ना कभी तो एक अलग ही लहजे में बात करो उनके, और जो रिएक्शन हो ना कहीं तो हिडन कैमरा रख दो और वो रिकॉर्ड करो. पीपल विल लिखिए अश्विनी का शो जब तक गाने सुन रहे तब तक ठीक है, ये क्या क्या करवा रही है अश्विनी. हाँ आई नो, आई ऑलवेज गेट दीज काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू कि तुम ना शांति से हमें ये प्रोग्राम सुनने नहीं देती, रोज आके कुछ तो होमवर्क देती हो. मजा कैसे आएगा ना अगर हम साथ साथ मिलके ये प्रोग्राम ना बनाए तो.
0: ये है लाइका गोल्ड द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 31 मिनट्स पास्ट 7। और आप सभी का शो है एक्चुअली। मैं यहाँ पे आके ना मतलब गपशप करती हूँ, पर शो तो एक्चुअली आप सब चलाते हो। इतनी सारे प्यारे प्यारे आंसर्स, इतनी सारी किस्से कहानियाँ। मैं इसलिए कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम इन ग्रैटिट्यूड कि आप सबसे मैं कनेक्टेड हूँ इस शो के द्वारा। एंड डेफिनेटली थैंक यू जाता है, ग्रैटिट्यूड जाता है टू लाइक ऑफ मीडिया एंड स्पेशली राज एंड सैंडी। बिल्कुल उन लोगों का सपोर्ट, मतलब एक होता ना कि आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ बहुत प्यारे लोगों से आप लोग मिलते हो एंड देन वो प्यारे लोग आपके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। ऑब्वियसली आपका हार्ड वर्क होता है, आपका एक जज्बा होता है। सो आई एम श्योर आप सबके लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, संगीत हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम पहलू है। तो किशोर कुमार फैंस, आप लोगों के लिए बढ़िया सी न्यूज़ है। गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रानी, संजय विथ हिनल एंड 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208514 5400। कितने प्यार से और आराम से मैंने नंबर बताया ना। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो। नेक्स्ट इज यादों की बारात। अरे आप लोगों ने बस एंजॉय करना है मधुमती से।
1: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., like a gold and like a radio Midlands. Yadu.

0: मिला लेंगे घड़ियां। देखते हैं टाइम कितना हुआ है, इट्स 7:45। आप सभी ने ट्यून किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। मेरे जो प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स अभी भी शांति से सोच रहे हैं और अपने ही मन में मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, व्हाट्सएप नंबर आपकी सेवा के लिए ही रखा गया है। अरे अगर ट्यून इन किया है तो चलिए भाई आइए, ज़रा हमें भी अपने जीवन के किस्से कहानियाँ सुनाइए। इसीलिए तो ये शो है, फैमिली वाला शो है, गाने बढ़िया चल रहे हैं, गपशप चल रही है। फैमिली के साथ में करते क्या है, हम गपशप करते हैं ना, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। चलिए दो फैंटास्टिक ट्रैक्स आपके लिए लाइंड अप हैं, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मजा आया, मस्ती भरे गीत भी थे ना। पहला गीत तो अरे बाप रे, कितने सारे मैसेजेस सोनू निगम की आवाज़ में संघर्ष फिल्म से सुनाया आप सभी को मुझे रात दिन। देखिए, जो हमारी मेंटल स्टेट होती है ना, उस स्टेट के हिसाब से हम गानों को रिलेट करते रहते हैं। नेक्स्ट वॉल्स हमको तुमसे हो गया है प्यार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अमर अकबर एंथनी, विच वॉज रिलीज इन 1977, उस फिल्म से सुनाया ये गीत। अच्छा, कभी कभी मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ तो हमारे एक लिसनर है, वो कहते हैं फटाफट बोलने वाली अश्विनी। आप लोगों ने सबने मुझे इतने प्यारे प्यारे नाम दिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, नाम दिए तब तक ठीक है, फिर आप ना एक तो यम्मी यम्मी डिशेज जो आप डिनर में खाते हो उसकी मुझे फ़ोटोज़ क्यों भेजते हो? क्या आपके सच में ध्यान नहीं आता कि मेरे भी सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं? हाँ, ऐसी बात नहीं कि मैं खा पी की नहीं हूँ, मैं अच्छे से खा पी के आई हूँ। दिनेश जी ने पूछा कि अश्विनी आज क्या बनाया, तो आई मेड मूंग दाल की खिचड़ी टुडे। देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ फैमिली शो इज कि हम लोग कितने सारे मुद्दों पे बात करते हैं ना, कि खाने में क्या बनाया है, फिर छोटी छोटी टिप्स एक दूसरे को देते हैं, गाने किसको कैसे पसंद है, किस गाने से किसकी क्या स्टोरी है, बहुत सारी बातें होती हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि भाई ये शो जो है ना, ये आपका अपना शो है, मैं तो बस आके यहाँ पे माइक पे बैठती हूँ, आप लोगों के साथ मैं गुफ्तगू करती हूँ और अच्छे अच्छे गीत पूरे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली है दिव्या अग्निहोत्री, जो इंडिया में रहती है, आज उनका है बर्थडे। शी फॉलोज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम इज रेडियो वाली अश्विनी। तो काफ़ी समय से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करती हूँ, उन्होंने कहा कि दीदी, शी कॉल्स मी दीदी एंड शी इज़ लाइक, दीदी क्या आप मेरे लिए आज कोई सॉन्ग प्ले करेंगे? हमको तुमसे हो गया है प्यार एंड मुझे रात दिन। सो ये दोनों गीत आपके लिए दिव्या, एंजॉय करो। एंड देखिए, कई बार हम ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ में कनेक्ट होते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया एंड ड्यू टू आवर वर्क। जैसे आप सभी मेरे लिए हैं स्ट्रेंजर, मैं आपके लिए स्ट्रेंजर, लेकिन म्यूज़िक जो है आपको और हमको लाया है करीब। एंड दिस शो, द इवनिंग शो विद अश्विनी, जैसे मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि भाई पूरा सप्ताह निकल जाता है, दिस इज़ थर्सडे, अब थ्रिलिंग थर्सडे आप और हम मना रहे हैं अभी, तो पूरे सप्ताह में ऐसी कुछ बात हुई है जो आपके दिल को चोट दी है, कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए, बिल्कुल दुख दर्द पीड़ा में उसे टर्न ना करें, इन शॉर्ट मुझे बताइए, इफ़ देयर इज एनी रेंट बताइए यहाँ पे, इफ़ आई कैन हेल्प यू आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट सॉल्यूशन। अब धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे, वॉल्यूम तो मैं कहूँगी कि थोड़ा ना अप रखो आप, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग गीत है यहाँ पे।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app. This is the Leica Radio Network, across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1, you'll get 128.4 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win of £75 voucher every day when you spend over £1,000, and also 1 gram gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: मनन उदास की आवाज़ में सुनाया आप सभी को कुर्बानी फिल्म से ये गीत। इसमें जो वॉट एवर दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज आई डोंट नो व्हाट्स दैट नेम ऑफ द व्हाट्स द नेम ऑफ दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जे टिंगे टिंगे टिंगे टिंगे जो ये आते हैं ना म्यूजिक तो मुझे तो नहीं पता वो क्या है, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ये गाना ना हमारे जहन में रह जाता है ना। ओके सो ज़रा ऐसे कुछ जॉब्स के बारे में आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ जो कभी एग्जिस्ट हुआ करते थे। खैर ये वाला जो है ये अभी इट माइट बी इन सम ऑफ द एरियाज मिल्कमैन हु यूज़ टू ड्रॉप मिल्क की बॉटल्स एट योर डोरस्टेप्स। अभी भी कुछ जगहों पर हैं ऐसे लोग जो सीधे डेयरी से मिल्क लेके आते हैं, वो पूछते हैं। आई थिंक आप सबके यहाँ पे भी ऐसे हुआ होगा कि आए होंगे ये मिल्क जो बॉटल्स में मिलती हैं कि भाई हम जो है फ्रेश लाते हैं, वी आर फार्मर्स एंड वी ब्रिंग मिल्क फ्रॉम आर डेयरीज। तो ये वाला जो काम था वो अभी काफ़ी कम दिखने लगा है। रीड न्यूज़ अलाउड इन फैक्ट्रीज सो वर्कर्स कुड एंड्योर द शिफ्ट। तो ये लेक्टर हुआ करते थे, इन्हें लेक्टर कहा जाता था, ये लोग पहले होते थे। पिन सेटर रीसेट बोलिंग पिन्स बाय हैंड व्हाइल बॉल्स केप्ट कमिंग, ये पहले हुआ करता था जॉब। नॉकर अपर गॉट पेड टू वेक वर्कर्स बिफोर अलार्म क्लॉक्स वर चीप, मतलब जाओ और हर खिड़की पे ठक ठक ठक उठो जागो। इसके बाद लीच कलेक्टर्स वॉक्ड थ्रू मार्शेस टू कलेक्ट लीचेस फॉर डॉक्टर्स। कितनी वैरायटी ऑफ जॉब हुआ करते थे ना उस जमाने में। आज आप और हम कितने कंफर्ट्स में रहते हैं, है ना। लैंप लाइटर्स लिट स्ट्रीट लैंप्स वन बाय वन बिफोर इलेक्ट्रिक लाइट टुक ओवर। माय गॉड पूरी स्ट्रीट्स पे लाइट लगाना कितना लंबा, इनका वॉक कितना होता होगा, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं ना जिम में जाने की। आइस कटर्स तो सॉड आइस फ्रॉम फ्रोजन लेक्स इनटू ब्लॉक्स बिफोर रेफ्रिजरेटर्स वर एग्जिस्टेड। ह्यूमन कंप्यूटर डिड कॉम्प्लेक्स मैथ्स बाय हैंड बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एग्जिस्टेड। टेलीग्राफ ऑपरेटर्स टैप्ड मोर्स कोड बिफोर फोन्स वर फोन्स मेड, या फोन कॉल्स वर मेड, उसके पहले ये हुआ करता था। And oh my god, this is a torture. Searched sewers for coins before poverty made it worth. इतने अजीब अजीब तरीके के जॉब होते हैं। कुछ कुछ जॉब्स हैं अभी भी बहुत अजीब जॉब्स हैं, पीपल गेट पेड वेल फॉर देम, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा ट्रैक है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आराधना फिल्म से लाई हूँ आप सभी के लिए एक गीत। मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
2: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a
4: gold. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: herald new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
11: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
10: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
12: You know how fans shout at football matches?
13: Oh, wake up!
12: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
14: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
15: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 37 मिनट्स पास्ट 8 आफ्टर मिनट। ट्यून इन किया द इवनिंग शो विद अश्विनी। इमोशन ऑफ द डे दैट इज थ्रिलिंग थर्सडे, है ना। तो थ्रिलिंग थर्सडे में कोई थ्रिलिंग सा गीत आप लोगों के लिए, चलिए किशोर कुमार की आवाज में आन मिलो सजना से जवानी और दीवानी।
2: ये है लाइका गोल्ड, Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show. Like a ghost. Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे लाइका गोल्ड।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: पॉडकास्ट बाहर आ चुका है एपिसोड बाहर आ चुका है। ओके, द न्यू एपिसोड इज़ आउट। कभी कभी ना जो ट्रांसलेट है ना वो नॉर्मली नहीं करना चाहिए। ओके, सो पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 19 इज आउट। लिव इन रिलेशनशिप होस्टेड बाय आर रेडियो वाली। आर लिव इन रिलेशनशिप स्टिल अ टैबू इन आर कल्चर। आर लिव इन रिलेशनशिप जस्ट अ ट्रायल राउंड बिफोर मैरिज। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पे बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात हुई हैं विच इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
3: Like Extra is here. This is Ashwini, in for Anisa Nazir on the evening show. Like
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our रेडियो।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
7: मीनार ज्वेलर्स। अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02208-767-7627।
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: This week's Like Extra podcast, Radio Valley talks to special guests about being South Asian and in a living relationship.
10: It's always a gamble. Life is a gamble. Marriage is a gamble. Relationships are as well. It can change within the year you meet somebody. Yeah. It can change within the year after you get married. It could change 25, 26 years after you're married. Anything can happen.
11: Like
8: Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
12: Ye hai Like Gold, 10:35 AM.
8: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 128.49 Indian rupee, 373.46 Pakistani rupee, 450.07 Sri Lankan rupee, 164.69 Bangladeshi taka, 85.90 Afghani.
13: Leica Radio.
8: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
14: LIKA Gold.
8: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £107.13 per gram.
8: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
14: Like a gold.
2: चेक करते हुए घड़ी कह रही एक बार जरा टाइम चेक कर लीजिए अश्विनी जी, तो टाइम चेक अभी इट्स 47 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी, एक से एक गाने पूरी यहाँ पे प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए जो लगी है, आप सभी गानों को पसंद कर रहे हैं। इस आवर के आखिरी गाने तक आप और हम पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके पहले बात करते हैं। अ ब्राइट ऑरेंज बर्ड वॉज फाउंड बाय द रोड साइड अनेबल टू फ्लाई, सो अनयूजुअली कलर्ड दैट रेस्क्यूज सस्पेक्टेड इट वॉज अ रेयर एक्जॉटिक स्पीसीज। हाउएवर वेट्स एट यूके वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल सून डिस्कवर द मिस्ट्री बर्ड वॉज एक्चुअली वेरी कन्फ्यूज सीगल कंप्लीटली कोटेड इन करी पाउडर, और वो करी पाउडर की वजह से वो टिक्का मसाला का जो पाउडर था वो उसका पूरा मसाला इस बर्ड के ऊपर लग चुका था। थैंकफुली असाइड फ्रॉम स्मेलिंग लाइक टेकआउट द बर्ड वॉज हेल्दी आफ्टर अ केयरफुल बाथ इट रिवील्ड इट्स नेचुरल वाइट फेदर्स एंड वॉज रिलीज बैक इन टू द वाइल्ड। द अनयूजुअल रेस्क्यू, ये अभी की बात नहीं, ये काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन स्टिल पूरा करी में एक बर्ड, मतलब वो उसका कलर ही चेंज हो गया। कहाँ ये, मतलब कहाँ किसी पतीले में जाके नहा के आ गया था सीगल, क्या कर रहा था पता नहीं। खैर, हमारे यूके में करीज बहुत मिलती हैं क्योंकि काफ़ी डोमिनेटेड है करी वाली डिशेस यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे रेगुलरली करी वाली डिशेस बनती हैं या होता है कि शाम के समय ज़रा हल्का फुल्का खाना वाना रहता है, एंड करीज जो है स्पेशली वीक में से एक बार ही बनती हैं, है ना, या फिर वी आर मोर फॉन्ड ऑफ सैलड्स या पास्ता, है ना, हर घर में अलग अलग होता है। इसके बारे में बताना चाहते हैं ज़रूर बताइए। लास्ट ट्रैक जो मैं आपको इस आवर का सुना रही हूँ दैट इज़ लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर की आवाज़ में क्रोधी, विच वॉज रिलीज इन 1981। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। ये मेवा मुझे ना बचपन में बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, मेवा इज़ लाइक मेवे के गुलाब जामुन भी बनते हैं, राइट। मैं काफ़ी खाने के मूड में आ गई हूँ ना अभी, उसी की बातें कर रही हूँ। नेक्स्ट ट्रैक ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
3: लाइका गोल्ड ऑफिशियली लंदन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।
8: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। दिल तो पागल है, बिल्कुल, जब आप प्यार में होते हैं तो पागल तो वैसे ही हो जाते हैं, तो दिल तो पागल है। इस फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में सुनाया आप सभी को टाइटल ट्रैक। तो इस तरह से मनहर उदास की आवाज़ में आप तो ऐसे ना थे। जी हाँ, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, लाइफ चेंज होती रहती हैं। अभी अगला गाना जो आपको सुनाने वाली हूँ आशा भोसले की आवाज़ में, नमक हलाल फिल्म से। मध्यम ही आवाज़ रखिए क्योंकि थर्ड आवर है, आसपास के लोग सो रहे होंगे तो बताएंगे क्या यार अश्विनी का शो जो तुम सुनते हो। सो क्या होता है, शो या अश्विनी का शो सुनते हो तो इतना शोर करते हो तुम। अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीकनाइट्स।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Like a Gold. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Like a
2: Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like R Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
7: For £1, you'll get 128.45 Indian rupee, 373.45 Pakistani rupee, 448.88 Sri Lankan rupee, 164.7 Bangladeshi taka, 85.18 Afghani.
8: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
7: Gold is currently trading at £107.13 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
7: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:43 PM. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ. कल होगा फैंटास्टिक फ्राइडे, तो आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी, यानी फुल ऑन दंगा मस्ती यहाँ पे शुरू हो जाएगा. दंगा इज अ मराठी वर्ड. दंगा आई थिंक हिंदी में भी होता है ना, मतलब ऐसे फुल ऑन मस्ती रहने वाली है. बिल्कुल अपबीट सॉन्ग्स रहेंगे. तो खा पी के अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए तैयार रहिएगा. 3 घंटे पूरा मस्ती रहने वाला है. ओके, जैसे थोड़ा वीकडेज में मैं थोड़े से स्लो, थोड़े से बीट्स अपबीट्स, बट फ्राइडे इज ऑल अबाउट अपबीट सॉन्ग्स. एंड गोल्ड नाइट्स आर ओवरनाइट सर्विसेज देयर फॉर पीपल हु आर ड्राइविंग, हु आर वर्किंग. नींद नहीं आ रही, लड़ झगड़ के मत सुनिएगा, क्योंकि फिर आपको गानों का मजा नहीं आएगा. आप लिरिक्स में खो जाओगे, म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पाओगे. लाइक अ रेडियो 90s फॉर ऑल द किड्स जो 90s में बड़े हो रहे थे, उन सब के लिए. लाइक अ रेडियो पंजाबी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पंजाबी सॉन्ग्स, एंड लाइक अ गोल्ड टू. और हमेशा की तरह बस इतना ही कहूंगी, प्यार जिंदगी जीने के लिए काफी है. तो प्यार दो, प्यार लो. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, है ना. एंड आई एम श्योर आप लोग कोई भी अपने पावर का यूज नहीं करते होंगे, क्योंकि आप हैं म्यूजिकल फैमिली, है ना. और प्यार से आपकी पूरी जिंदगी अच्छे से निकल रही है. लाइफ बहुत सुंदर है, प्लीज उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें. कम्युनिकेट करें, जो भी चीज बोलना चाहे बोल दीजिए, आमने सामने क्लियर रखिए. ऑन दैट नोट आई हैव टू से प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल. कल शाम मिलेंगे मस्ती मजा गपशप इन द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: ये है लाइका गोल्ड.
9: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
10: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Dim tana na dir tana tana dere na dim tana na dir tana tana dere na dim tana na dir tana tana dere na dim tana na dir tana tana dere na dim tana na dir tana dir tana.
1: ये है Like a Gold.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: वेडिंग्स सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा. आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444. Our line.
8: 10 days to go. Aslam is coming to the O2 on the 14th of June. Only 10 days to go for a night full of hits, emotion and magic. Tickets at AXS, exclusive radio partnership, Like a Radio.
9: Classic Nahume. Aapke

0: nights. Hit tracks non-stop throughout the night. Like a Gold on 10:35 a.m.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलिडे साथे।
7: सीरीन हॉलिडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स।
8: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ।
7: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
8: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
7: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirenholidays.co.uk पर।
9: ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
12: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
1: फिर
0: फुर,
1: फुर,
0: फुर, फुर, फुर।
2: बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
0: कह दो
3: कह दो
0: कह दो
3: कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।

0: ये गुलम।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: है लाइका गोल्ड.
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर